तीनों टाइटल हमारे पास घर पे आएंगे, फिर हमारे को कोई बोल के दिखाए इंडियंस कैन प्ले फुटबॉल. वी डोंट प्ले, वी डोमिनेट. वी डोमिनेट, सो डोमिनेट, हैव फन, हैव द बेस्ट मैच ऑफ द लाइफ. बस मेरे लिए बट ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मैटर नहीं करते. मेरे लिए क्या रिकॉर्ड मैटर किया, पहली बार 50 साल में इंडियन टीम जीत के गई है. वर्ल्ड रिकॉर्ड हो ना हो, आई डोंट केयर, इंडियन टीम जीत के गई है तीनों टूर्नामेंट. तो इससे क्या पता, इट्स नॉट अबाउट अस. इससे मैंने प्रूव कर दिया है टू ऑल इंडियंस दैट वी हैव इट इन अस एंड वी विल. मतलब इससे क्या होएगा, बाकी इंडियंस आएंगे अब, क्योंकि हमने ठोक